0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगलार शमा।
1: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुद्दा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स, फोन 09382732

0: back right after the commercial break.
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रापता कर सकते हैं।
2: रेडियो दिलबर, हम कभी

0: भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: You're just seconds away from more of your favorite music on FM 94.
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: You're just seconds away from more of your favorite music on FM 94.

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: पर दाहुम दे जी सीजीरियन यानी सी सेक्शन ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए बांधे जे पागे के टोल अद्वियात ऑपरेशन थिएटर चार्जेस अस्पताल की द उसेदो और नोर टोल तिबी सहूलियत ब शामिल भी द माशुमानो महफूज पैदाइश और नोर तिबी सहूलियत द पारा समदस्ती राबितो करे पतयात साथे अल खिदमत फरजाना शहनवाज अस्पताल नबी किले आलमाबाद सवाबी मोबाइल नंबर 0327-77-888 जमुंग नारा सेहतमंद अमोर महफूज मुस्तकबिल
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग जवानको पवख बानी गम उनकले शी नु प रारवान वख की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ दी शी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर रजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और आवाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी अगर हम मुकम्मल तो गबाने खत्म होगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

एल आओ क्लिंडामाइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स थी आओ दगा प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन सासु दानी आओ द दानो दागुना पर मुकमल तोगबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली आओ द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

0: ये है एक दुनिया इल्म व अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर राबता कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तसिंगलार शमा।
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चरतची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा।
2: नुद्दा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732

0: को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: जवानी द जवानक न बगैर निमगिड़ी हो कुचर तग जवानक को पवख बानी गम उनक ले लेशी नो रारवान वक की दग जवान के सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजिदा न دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکساید سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: نسألك يا من هو الله.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radio.com।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radio.com।

अपने घर की छत पर ठंडी हवा से लुत्फंदोज हो रहा होगा और कोई दिन भर की थकन के बाद आराम कर रहा होगा, और कोई अपने प्यारों के साथ बैठा होगा, कोई सफर में होगा, और कोई बहुत से दोस्त हाय हाय हाय हाय हाय हाय इस वक्त जो है अपनी रात को खूबसूरत बनाने के लिए रेडियो दिलबर एफएम 94 स्वाबी के साथ जुड़े होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना रेडियो रेडियो दिलबर एफएम 94 स्वाबी ऑन किया है। जी आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, एंड इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए मोहब्बत भरा सलाम एंड ढेरों दुआएं। सामीन, रात का अपने एक अलग ही मिजाज होता है, दिन के शोर के बाद जो है ना जब खामोशी जमीन पर उतरती है, हाय हाय हाय हाय हाय, जब मसरूफ सड़कें आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगती हैं, जब थके हुए लोग अपने रब के हजूर जो है ना शुक्र अदा करते हैं, सुकून तलाश करते हैं, तब कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो अपने ही अंदर छुपी हुई कहानियों से बातें करते हैं। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, कुछ आंखें किसी को याद करके जाग रही होती हैं, और कुछ दिल जो है ना दुआएं मांग रहे होते हैं, और कुछ सिर्फ एक ऐसी आवाज के मुंतजर होते हैं जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं है। भाई आप सुन रहे हैं एफएम 94 रेडियो दिलबर स्वाबी, और मैं आप लोगों का मेजबान, आप लोगों का जिन जान ताहिर जमान, आपकी पहचान आपका मान, अरे आपके कुर्बान ताहिर जमान, आप लोगों के संग संग आप लोगों के साथ साथ, और अगले दो घंटे तक हम एक खूबसूरत सफर पर साथ रहेंगे। जी ये सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है बल्कि दिलों से दिलों तक पहुंचने वाला एक एहसास है, जहां लव सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। यहां बातें होंगी जिंदगी की, उम्मीद की, मोहब्बत की, रिश्तों की, ख्वाबों की, खामोशियों की, और उन एहसास की जिन्हें अक्सर हम दुनिया से छुपा लेते हैं मगर अपने दिल से कभी नहीं छुपा पाते। मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे सामीन, जिंदगी बहुत ज्यादा मुख्तसर है, इसलिए अगर आज किसी को मुस्कुराने का मौका दे सकते हैं तो जरूर उसे मुस्कुराने का मौका दीजिएगा। और ये भी मैं यहां कहना चाहूंगा कि अगर किसी नाराज शख्स को मना सकते हैं तो देर ना कीजिएगा, अगर किसी अपने से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं तो उसे खल पर मत छोड़िएगा, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बाज़ोकात एक छोटा सा लफ्ज, एक मुखलिस दुआ, एक सच्ची मुस्कुराहट या एक खुलूस भरा रवैया किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। और आज की रात के लिए हमारा खूबसूरत मौजू है जनाब, अल्फाज खत्म हो जाते हैं लेकिन रवैये हमेशा याद रहते हैं, ये हमारा आज का मौजू होगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सामने इंसान अपनी जिंदगी में हजारों बातें सुनता है, बहुत से वादे भी करता है, और बहुत सारे मतलब जो है ना वादे भी सुनता है, बहुत सारी तारीफें भी, शिकायतें भी सुनता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अल्फाज धुंधला जाते हैं। अलबत्ता लोगों के रवैये हमेशा याद रहते हैं, अगर किसी ने मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामा हो, आपकी बात सुनी हो, आपको इज्जत दी हो, आपकी खामोशी को समझा हो, तो वो एहसास बरसों बाद भी दिल में जिंदा रहता है। इसी तरह अगर किसी ने बेतवज्जी की हो, दिल दुखाया हो, एतमाद तोड़ा हो, यकीन तोड़ा हो, बावर तोड़ा हो, तो उसका असर भी इंसान के दिल पर देर तक बाकी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि खूबसूरत अल्फाज से ज्यादा खूबसूरत रवैया इख्तियार कीजिए, क्योंकि जबान का असर चंद लम्हों तक रहता है मगर इखलाक और किरदार की खुशबू उम्र भर इंसान के साथ चलती रहती है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत रात को जो है ना हम खूबसूरत बनाएंगे, मजीद भी खूबसूरत बनाएंगे। आज की इस खूबसूरत रात में मेरे साथ आप रहिएगा, मेरे साथ जरूर निभाइएगा, मेरे साथ देने के लिए 0307 27 जनरेटेड ट्रैक आप लोगों के लिए शामिल करने लगा हूँ। नॉट बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड ट्रैक, नो नो नो नो नेवर, ये जनरेटेड ट्रैक है भाई, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तू मेरी जिंदगी है।

ये सच बताइएगा कि मेरी आप लोगों के साथ अचानक मुलाकात हो रही है और अचानक मुलाकात में आप लोग मतलब लग रहे हैं और का आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरे नहायत ही मुअज्जज़ मोहतरम बावकार दिलों के करीब रहने वाले सुनने वाले जितने भी लिसनर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं एफएम 94 रेडियो दिलवर स्वाबी से, सो लेडीज एंड जेंटलमैन गर्ल्स एंड गाइज, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे नहायत ही मुअज्जज़ बावकार और दिलों के करीब रहने वाले सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे A1 होंगे, फर्स्ट क्लास और मजे के साथ मतलब अपनी जिंदगी या फिर अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। साथ साथ हम एक पश्तो मिल करते हैं और आप लोगों के साथ बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा। पश्तो का ये खूबसूरत सा ट्रैक सुन लेते हैं एंड जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैसेजेस को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा जी।

0: ये कहकर कितना झूठा है मेरा कसम उठाने वाला, और उंगलियां पैर मेरे बालों में, उंगलियां पैर मेरे बाल बर जाग कर सुलाने वाला,
1: जागता रहता है सुलाने वाला,
0: और मैं तेरे हुस्न में उसको तला हूँ।
1: मैं तेरे हुस्न में करता हूँ,
0: हाँ मैंने उसको तलाश करता हूँ। कितना सुंदर है सनम बनाने वाला,
1: हाय कितना सुंदर है सनम तुझको बनाने वाला,
0: और खुदा करे मेरे दहलीज पे आए,
1: हाँ खुदा करे मेरी दहलीज पे आए कोई,
0: खुदा करे मेरे आए कोई कोई तैयत को उठाने वाला।
1: आ हा, बहुत हो मेरी मैयत को उठाने वाला।
0: मैं तो खाकसार का बना पुतला हूँ,
1: मैं तो खाकसार हूँ मिट्टी का बना पुतला हूँ,
0: और एक तेरी जात ही है मुझको सजाने वाला।
1: एक तेरी जात ही है मुझको सजाने वाली।
0: ये अहमद अहमद फराज की तरह लिखी हुई गजल थी आपके साथ शेयर।
1: बहुत खूब, बहुत ही आला,
0: बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चले बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह के कॉलर्स होने चाहिए भाई कि जो मतलब जो है ना एक्टिवली बात भी करें, और दूसरा ये है कि कुछ थोड़ी सी गहरी बातें करें, संजीदा बातें करें, जिंदगी के करीब बातें करें। गमे दिल को इन आंखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, और तड़पना तड़पना भी हमें आता है, और तड़पाना भी हमें आता है, सॉरी।

0: मैं लिसनर्स वेलकम कहता हूँ आप सभी को, मेरे आपके आ रहे हैं मैसेजेस को भी साथ सिल करते हैं, कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं कहाँ कहाँ से, और इसी के साथ ये कॉलर भी हैं, कॉलर से भी बात करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपकी कॉल मुझे कट करनी पड़ेगी, उसकी वजह ये कि आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही। दोबारा से अगर आप डायल करना चाहें या दोबारा से मिलाना चाहें नंबर, तो दोबारा से मिला सकते हैं, दोबारा से डायल कर सकते हैं 03072700666 03072700666। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर जमान सिंगे महम दसौबेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मह, आपने हमारा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सिंगे तासु, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तासु, अखबल अलवाई तासु खी वजीहा मुंग सरफ प्रोग्राम के वजीहा मुंग तो मैसेज के जी, वजीहा ने अलावा वजील अजगमदन मुंग तो मैसेज के वजीला अस्तासम मनाना, शुक्रिया जी। सलामुना भाईजान, वालेकुम अस्सलाम सिंगे भाईजान, प्रोग्राम मौसम जबरदस्त रवान दे ठूल और इदुन को ताजमा साइड सलामुना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन भाई कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं जी टोपी से बात कर रहा हूं, जान मोहम्मद बात कर रहा हूं।
0: जान मोहम्मद बात कर रहे हैं टोपी से, खैर खैरियत से आप ठीक हैं? खैरियत से ना,
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। प्रोग्राम तो मैं आपका कई बार सुन चुका हूँ, तकरीबन ये मेरा पांचवा काल है आपको प्रोग्राम करने में।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बाबू ये जो कह रहा है कि प्रोग्राम से आज तो हमारे कसम से आपके आपके साथ मुफ्ती साहब तो वो थे, तो उसकी तरफ मैंने तीन चार बार उसके भी कॉल किए, आपको भी कॉल किया। आज तो आज बहुत अच्छे मौजू लेकर आए, अच्छे बातें कर रहे हो। तो कई बात मैंने भी ये भी सोचा है ना कि लोग जो है ना अभी तक टिकटॉक पे फंसे हुए हैं ना, लोग टिकटॉक आ रहे सब सुन रहे हैं ना, इधर शाम के अजाने हो रही है, यहाँ लोग जो है ना टिकटॉक की जो है सुन रहे हैं ना,
0: ऐसे ही होता है।
1: तो वो जो है ना बिजली तक मोटरसाइकिल था ना, उसने एक बार समझाया था कि 10 साल के बाद ना लोग ना जो लड़की होते हैं वो डम होते हैं, और जो लड़की है लड़के होता है वो भी डम होते हैं ना, हमारे बच्चे जो है ना।
0: अच्छा,
1: तो वही बात अभी मुझे समझ आ रही है कि टिकटॉक पे कोई जो है ना कभी इधर से नाच रहे कभी उधर से नाच रहे, तो हमारे पठान लोग जितना है ना वो लोगों को यही समझ आए कि बस डांस करो और जो है ना टिकटॉक पे जो ना चढ़ाओ, ये व्यूज आ रहा है जो लोग तुम लोगों ने क्या काम शुरू किया हुआ है।
0: बात दरअसल ये है कि पहले पुराने लोगों में जो है ना, जो हमसे पहले लोग गुजर चुके हैं ना, ठीक है, उन लोगों में हया हुआ करता था, उन लोगों में इज्जत हुआ करती थी, वो मतलब जो है ना उनमें एक पुख्तनवली थी, ठीक है। बात मेरी समझ आ रही है आपको?
1: बिल्कुल आ रही है मेरे को।
0: वो लोग जो है ना बड़े इज्जत देने वाले लोग थे, बड़े कदरमंद लोग थे। आजकल की यंग जनरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने जो बातें की हैं, ठीक है, ये अपनी जगह जो है ना पक्की फिट होती हैं जी, और बड़ा पक्का जो है ना आपने एक निशाना मारा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बल्कि क्या हो सकते हैं जी? जी
1: मैं ये बता चाहूंगा कि आज का जो रेशन है ना
0: जी,
1: कल फोन टिकटॉक पे जो लोग है वो लोग है ना गेम पे तो जुड़े रहे, जो पबजी खेल रहे हैं, जो फ्री फायर खेल रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने खुद भी फ्री फायर खेला है ना
0: जी,
1: लेकिन ये अभी होते हैं दोस्तों वाले ना खेल ग्रुप वाले होते हैं ना,
0: ऐसे ही
1: इधर अजानी होती है और इधर ये ग्रुप में गेम खेलते तो फिर वो गेम से निकल नहीं पा रही है, तो अजानी शुरू होती है, लोग नमाज के लिए पढ़ जाते, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना वो गेम से खेला क्योंकि अभी चलो गेम आऊंगा ना, तो उन्हें मस्त टाइम भी खत्म हो जाता है, सब भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये वाले जन को जो है ना ये बात मैं कई बार सुन रहा हूँ, मैं क्योंकि रेडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 2-3 महीने हो गए मैं जो है ना रेडियो आपको सुनता हूँ ना कई बार ना, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपसे बात करने से मेरा 5 बार कल है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, बाकी प्रोग्राम सुनता हूँ तो मैंने कॉल नहीं किया ना।
0: अच्छा,
1: तो आपने आज मौजू वही लेकर आया है तो मेरा बात भी वही है, तो मैंने कहा भी शेयर करूँ आपके साथ।
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके इस मौजू पर, मैं मजीद गुफ्तगु भी करूंगा, बात करूंगा। खैर, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें।
1: ठीक है, तो लोगों को ना ये बात है कि लोगों को अपने वालिदैनों को ना समझाना, अपने बच्चों को नजर रखनी चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है,
0: नमाज
1: के टाइम नमाज से जाता है, कुरान के टाइम जो है ना कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता, या स्कूल के जाते वक्त स्कूल जाता है या नहीं जाता। तो इसको मोबाइल से जो टच मोबाइल आया है ना, एक अगर इंसान सब अच्छे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा है, लेकिन आजकल इससे लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोग अच्छे के बजाय इसको बुरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: मतलब गलत बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ, आप आए, आपने मुझे एक हल्का से इशारा दे दिया, इस पे मैं खुल के बात करता हूँ और काफी सारी बातें करूंगा मैं इस पे, ठीक है?
1: ठीक है जी,
0: चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई हमारे साथ दे रहे थे टोपी से जी, अगर आप भी हमारे साथ देना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे मतलब जब फर्स्ट टाइम मतलब दोबारा रिज्वाइन मैंने किया एफ एम 94 रेडियो दिलबर सोहाबी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये सोहाबी के लोग जो है ना उर्दू पसंद नहीं करते, तो ये ऐसा तो वैसा। तो मैंने एक बंदे को चैलेंज दिया था, मैंने कहा कि इनको, इन सबको जो है ना उर्दू की लाइन पे मैं दोबारा लेके आऊंगा, क्यों पसंद नहीं करते? उर्दू के ड्रामे देखते हैं, उर्दू घरों में जो है ना बोलने की कोशिश करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पे रेडियो पे ये उर्दू प्रोग्राम नहीं लाइक करेंगे या उर्दू प्रोग्राम नहीं सुनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू पसंद नहीं करते, तो ये ऐसा तो वैसा। तो मैंने एक बंदे को चैलेंज दिया था, मैंने कहा कि इनको, इन सबको जो है ना उर्दू की लाइन पे मैं दोबारा लेके आऊंगा, क्यों पसंद नहीं करते? उर्दू के ड्रामे देखते हैं, उर्दू घरों में जो है ना बोलने की कोशिश करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पे रेडियो पे ये उर्दू प्रोग्राम नहीं लाइक करेंगे या उर्दू प्रोग्राम नहीं सुनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन

0: बुल
1: हेलो हेलो हेलो आज बीच में माइक जो है ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं है जी। मेरे मोहतरम सामीन म्यूजिक को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं यहाँ पे। मेरे मोहतरम सामीन अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ा या इन तमाम में से सबसे अजीम नेमत हदायत है। और हदायत का सबसे बड़ा सर चश्मा जो है ना कुरान मजीद है, कुरान पाक है। बस ये थे मुसलमान हमारा इस चीज पे ईमान है, यकीन है, बावर है, पक्का कामिल यकीन है। ये सिर्फ एक किताब, एक ऐसी किताब नहीं है जिसकी तिलावत की जाए, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का मुकम्मल दस्तूर है, सोचने का अंदाज है, किरदार बनाने का एक मयार है और इंसान को उसके मकसद हयात से आगाह करने वाली किताब है। आज साइंस जितनी तरक्की कर रही है, बहुत से ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हकायक इंसान के सामने आ रहे हैं जिनकी तरफ कुरान मजीद ने सदियों पहले जो है ना इशारा किया था। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को यहां पे मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर इंसान की पैदाइश के मराहिल, कायनात की वसत, आसमानों और जमीन की तखलीक, पानी से जिंदगी का ताल्लुक और फितरत के जो है ना बेशुमार निज़ाम, ऐसे मौजूआत हैं जिन पर जदीद साइंस तहकीक कर रही है और तहकीक मतलब जारी है, जिनके बारे में जो है ना मुसलमान अहले इल्म ये बात कहते हैं कुरान ने जो है ना इस पर गौर व फिक्र की दावत पहले ही मतलब दे दी थी। ताहम कुरान का असल मकसद साइंस की किताब बनना नहीं है, बल्कि जो है ना इंसान को हदायत, इखलाक और अल्लाह ताला की मार्फत अता करना है, रब ताला की मार्फत अता करना है। मेरे दोस्तों, अगर हम कुरान मजीद को सिर्फ सवाब की नियत से पढ़ें तो यकीनन अजर मिलेगा, लेकिन अगर हम इसे समझ कर पढ़ें, इसके मकाम पर गौर करें और इसे अपनी जिंदगी में नाफिज करें तो हमें जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। हमें मालूम होता है कि इंसान क्यों पैदा हुआ, इंसान का मकसद क्या है, अच्छे और बुरे में फर्क क्या है और कामयाब जिंदगी किसे कहते हैं। जब इंसान कुरान मजीद को समझना शुरू करता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसका जाविया बदलने लगता है, उसके फैसलों में पक्का पाना आ जाता है, पुख्तगी आ जाती है, उसके अखलाक में नरमी पैदा होती है, उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ और बंदों की मोहब्बत पैदा होने लगती है। बात मेरी समझ आ रही है? तब उसे एहसास होता है कि असल कामयाबी सिर्फ शोहरत, दौलत या दुनियावी मकाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रजा और एक पाकीज़ा किरदार है, एक अच्छा पाकीज़ा किरदार है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर हमने कुरान मजीद को अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया, तो हमें जिंदगी का मतलब भी समझ आ जाएगा। फिर हमें जो है ना मालूम भी होगा कि तकब्बर क्यों नुकसानदेह है, आजजी क्यों इज्जत देती है, माफी क्यों दिलों को जोड़ती है, सब्र क्यों इंसान को जो है ना मजबूत बनाते हैं, और शुक्र जो होते हैं क्यों नेमतों में इजाफा करते हैं। मेरे अजीज सामीन, हमें कुरान को सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है ना इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। रोजाना चंद आयात तर्जुमे और तफसीर के साथ जो है ना पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने की आदत इंसान की फिक्र को बदल सकती है, उसकी सोच को बदल सकती है, उसके दिल को सुकून दे सकती है और उसे जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखा सकती है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की रोशनी अता करें, पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। आज के इस मौजू पर मजीद कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मौजू बड़ा जानदार है जी। इस मौजू को अगर आप सही मानों में समझें, इस पर जितनी कोई गुफ्तगु हो, जितनी कोई बात हो, कम है भाई। अल्फाज खत्म हो जाते हैं लेकिन रवैये हमेशा याद रहते हैं। इंसान को रवैये याद रहते हैं ना, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, رویے یاد رہتے ہیں. میرے سامعین, زندگی میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں, ہزاروں باتیں سننے کو ملتی ہیں, بے شمار وعدے کیے جاتے ہیں, تعریفیں بھی کی جاتی ہیں, شکایتیں بھی کی جاتی ہیں, وقت بھی گزارا جاتا ہے, الفاظ بھی ہوا میں بکھر جاتے ہیں, جملے بھی بلا دیے جاتے ہیں, لیکن انسان کا رویہ کبھی نہیں بلایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا, ہمیں برسوں پہلے کہی گئی بات یا ہر بات تو یاد نہیں رہتی, لیکن جو ہے نا ہمیں یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے مشکل وقت میں جو ہے نا ہمارا ساتھ دیا تھا, یا پھر ہمارا ہاتھ تھاما تھا, فلاں نے ہماری خوشی کو سمجھا تھا, فلاں نے ہماری عزت کی تھی, فلاں نے ہمیں بے وجہ تکلیف دی تھی. یہی رویے انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں. میرے دوستو, میٹھے الفاظ بولنا آسان ہے لیکن اچھا رویہ اختیار کرنا کردار کی مضبوطی مانگتا ہے. بعض لوگ زبان سے محبت کا اقرار یا اظہار تو کر دیتے ہیں, مگر ان کے رویے میں بے رخی ہوتی ہے, اور بعض لوگ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے مگر ان کا ہر عمل, ہر انداز, ہر قربانی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعی مخلص ہیں. اس لیے انسان کو اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے پہچانیے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پشتون معاشرے میں اگر محبت کا نام لیا جائے تو اس چیز کو بڑا مطلب جو ہے نا برا مانا جاتا ہے, بڑا برا جانا جاتا ہے. حالانکہ محبت جو ہے نا یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے جی, بڑا ایک مطلب اس طرح کا رشتہ ہے کہ اس پہ جتنی کوئی گفتگو کی جائے, جتنی کوئی بات کی جائے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ یار طاہر محبت پہ کرتے ہو, محبت پہ جو ہے نا آپ نے, مجھے لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, یا بڑا مطلب جو ہے نا گہرا ڈیپلی اور بہت زیادہ ڈوب کے جو ہے نا آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ محبت کی ہے. تولا جاتا ہے لڑکی کے ساتھ. بات میری سمجھ آ رہی؟ محبت کو لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ناپا جاتا ہے, لڑکی اور لڑکے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حالانکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں بھائی. اس کی حقیقت بڑی بڑی چینج ہے, بہت زیادہ چینج ہے. اس کی حقیقت پہ میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں کرنا چاہوں گا. یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس, دین پھر آپ لوگوں کے میسیجز جو باقی رہتے ہیں ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا, پروگرام میں انٹرٹین کروں گا. میں کیوں نہ محبت کی بات کروں, کیونکہ انسان کو اللہ نے محبت سے پیدا کیا, انسان کے دل میں محبت ڈالی ہے. میں کیوں نہ بات کروں,

हेलो हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, मैं कुछ थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहूँगा। सॉरी माजरत, मेरा ये माइक जो है ना थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। मेरे मोहतरम सामीन, मोहब्बत एक एहसास भी है, कुछ थोड़ी सी रोमानवी बातें भी कर लेते हैं। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना आसान नहीं है। ये सिर्फ दिल की धड़कन का नाम नहीं है, न सिर्फ जो है ना किसी को याद करने का नाम है, बल्कि मोहब्बत एक जिम्मेदारी है, एक एतमाद है, एक एहतराम है और एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना है, एक दूसरे की खुशी तलाश करना है। रोमानवी मोहब्बत अपनी जगह एक खूबसूरत एहसास हो सकती है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती उस वक्त जाहिर होती है जब इसमें सच्चाई, इज्जत, वफादारी, पाकीजगी भी शामिल हो। अगर मोहब्बत सिर्फ जाना जाहिरी हुसन तक महदूद हो तो वक्त के साथ इसकी चमक मानक पड़ सकती है, लेकिन अगर मोहब्बत किरदार, एतमाद, इखलाक और एहतराम पर कायम हो तो वक्त इसे मजीद जो है ना मजबूत बना देते हैं।